0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: City FM 89.
4: Chicken pox yaad hai. Ye shingles ban ke wapas aa sakta hai. कभी सोचा भी नहीं था. तकरीबन हर शख्स के जिस्म में शिंगल्स वायरस छुपा होता है, तो शिंगल्स को अंडर एस्टिमेट ना करें.
5: फौरन अपने डॉक्टर से शिंगल्स के बारे में बात करें. खतरे में घिरे हर फर्द को जरूरी नहीं शिंगल्स हो. ये पब्लिक सर्विस मैसेज जीएस के पाकिस्तान की जानिब से है. मजीद मालूमात के लिए अपने डॉक्टर से रुजू करें.
6: टेलीनॉर लाया मंथली कॉल प्रीमियम ऑफर. अभी सिर्फ 500 रुपए में ऑफर लगाओ. 3000 तमाम नेटवर्क मिनट्स पाओ. अब पहले से बेहतर कनेक्शन और सर्विसेज के साथ पूरा महीना खुल के करो बात, क्योंकि टेलीनॉर है ना यार. जाली नामी स्कीम और माली फ्रॉड के पैगाम मिलने की सूरत में अपने मोबाइल ऑपरेटर की हेल्पलाइन पर रुजू करें.

0: अपने कमाल बैकअप से AGS ट्यूबलेट दिखाए काम, इसलिए हर पाकिस्तानी के दिल को मिले पूरा आराम। AGS ट्यूबलेट बैटरी, दिल को है आराम।
1: मुबारक हो, यूफोन एंड टेलीनॉर की कॉलिंग फैमिलीज मिलकर हो गई हैं मोर देन 7 करोड़। तो यूफोन से टेलीनॉर एंड टेलीनॉर से यूफोन करो लाता-दात कॉल्स किसी भी पैकेज पे और रहो कनेक्टेड मोर देन एवर बिफोर।
2: रकमी इस्लामिक डिजिटल बैंक, यहाँ मिलेंगे रियल सॉल्यूशंस। जैसे बस 5 मिनट्स में अपना अकाउंट ओपन करें,
3: फंड ट्रांसफर हो या कोई भी बिल पेमेंट, ऑलवेज ऑन कस्टमर सपोर्ट के साथ,
2: क्योंकि रकमी है 100% इस्लामिक।
3: जो तुम चाहो,
2: डाउनलोड द ऐप नाउ।
4: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: City FM 89.
4: ड्यूलक्स दे रहा है पेंट की 12 साल तक की वारंटी. आपका घर रहे महफूज पेंट की हर झंझट से, जैसे बिल्कुल नया.
5: टेलीनॉर की वीकली एक्सट्रीम प्लस ऑफर लगाओ. 550 रुपए में 60 जीबी डेटा, 15,000 टेलीनॉर और 300 दूसरे नेटवर्क मिनट्स पाओ. अब पहले से बेहतर कनेक्शन और सर्विसेज के साथ पूरा हफ्ता बेफिक्री से अनलिमिटेड स्ट्रीमिंग और सोशलाइजिंग करते जाओ, क्योंकि टेलीनॉर है ना यार. जाली नामी स्कीम और माली फ्रॉड के पैगाम मिलने की सूरत में अपने मोबाइल ऑपरेटर की हेल्पलाइन पर रुजू करें.
6: इस आवाज ने छीन लिया है सुकून, तो ले आए मॉसपेल, क्योंकि डे हो या नाइट मॉसपेल करेगा घंटों फाइट. मॉसपेल, मच्छर आपसे दूर रहने पर मजबूर.
7: मुबारक हो, यूफोन एंड टेलीनॉर की कॉलिंग फैमिलीज मिलकर हो गई हैं मोर देन 7 करोड़. तो यूफोन से टेलीनॉर एंड टेलीनॉर से यूफोन करो लातादात कॉल्स किसी भी पैकेज पे और रहो कनेक्टेड मोर देन एवर बिफोर.
8: सिटी एफएम 89
9: कराची, आर यू रेडी? ट्राई वाह इवेंट्स प्रेजेंट्स अ नाइट दैट ट्रांसेंड्स म्यूजिक.
10: तुझको खबर ही नहीं.
9: This isn't just a performance, it's a soul-stirring takeover. Witness global superstar Atif Aslam live as he brings his legendary energy to stage on 8th May 2026 at the Moin Khan Academy DHA Phase 8. Get your tickets now from Ticketwala. City FM 89, exclusive radio partners.
11: We are
12: City FM 89.
11: You're listening to The Breakfast Show with Shermeen.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: City FM 89.
4: Chicken pox, yaad hai? Ye shingles banke wapas aa sakta hai. Kabhi socha bhi nahi tha. Body pe blisters aur itna sharp pain. Mahino tak zindagi bilkul mushkil ban gayi thi.
5: काश मुझे शिंगल्स के बारे में पता होता।
4: याद रखें, तकरीबन हर शख्स के जिस्म में शिंगल्स वायरस छुपा होता है, तो शिंगल्स को अंडरएस्टिमेट ना करें।
6: फौरन अपने डॉक्टर से शिंगल्स के बारे में बात करें। खतरे में घिरे हर फर्द को जरूरी नहीं शिंगल्स हो। ये पब्लिक सर्विस मैसेज जीएस के पाकिस्तान की जानिब से है। मज़ीद मालूमात के लिए अपने डॉक्टर से रुजू करें।
7: मुबारक हो, यू फोन एंड टेलीनॉर की कॉलिंग फैमिलीज मिलकर हो गई हैं मोर देन 7 करोड़। तो यू फोन से टेलीनॉर एंड टेलीनॉर से यू फोन करो लातादात कॉल्स किसी भी पैकेज पे और रहो कनेक्टेड मोर देन एवर बिफोर।
8: इस आवाज ने छीन लिया है सुकून, तो ले आए मॉसपेल, क्योंकि डे हो या नाइट मॉसपेल करेगा घंटों फाइट। मॉसपेल, मच्छर आपसे दूर रहने पर मजबूर।
9: You are listening to City FM 89.
10: We are playing your song.
11: When I grow up, I want to be strong.
12: For many children in Pakistan, that chance is already slipping away. 4 in 10 children under 5 suffer from stunting.
11: I want to learn big things.
12: Yet more than half of our children lack essential nutrients like iron, vitamin A, and zinc, affecting how they grow, think, and learn.
11: I want to be the fastest.
12: And nearly 1 in 6 children suffer from wasting, a severe form of malnutrition that weakens growing bodies.
11: I want to grow up like everyone else.
12: Because every child deserves a chance to grow, learn, and thrive. Act now for the foundations of our nation.
13: Nurture today, strengthen tomorrow.
12: Act, a Dawn Media Initiative.
1: City 89. You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 10:30 a.m.
3: City FM 89.
4: Telenor laya monthly call premium offer. Abhi sirf 500 rupaye mein offer lagao. 3000 tamam network minutes pao. Ab pehle se behtar connection aur services ke saath pura mahina khul ke karo baat. Kyunki Telenor hai na yaar. Woohoo! Jali nami scheme aur mali fraud ke paigham milne ki surat mein apne mobile operator ki helpline par rujoo kare.
2: City
5: FM 89.
4: Mubarak ho. Uphone and Telenor ki calling families milkar ho gayi hain more than 7 crore. तो यूफोन से टेलीनॉर एंड टेलीनॉर से यूफोन करो लातादात कॉल्स किसी भी पैकेज पे और रहो कनेक्टेड मोर देन एवर बिफोर.
6: सिटी एफएम 89, वी आर प्लेइंग योर सॉन्ग.
7: एवरीबॉडी गो.
1: यू आर लिसनिंग टू
8: नॉनस्टॉप हिट्स.
9: नॉनस्टॉप हिट्स.

0: I searched for God and found only myself. I searched for myself and found only God.
1: Bulisha.
2: It's 2:30 PM.
3: City.
4: टेलीनॉर लाया मंथली कॉल प्रीमियम ऑफर. अभी सिर्फ 500 रुपए में ऑफर लगाओ, 3000 तमाम नेटवर्क मिनट्स पाओ, अब पहले से बेहतर कनेक्शन और सर्विसेज के साथ पूरा महीना खुल के करो बात, क्योंकि टेलीनॉर है ना यार. जाली नामी स्कीम और माली फ्रॉड के पैगाम मिलने की सूरत में अपने मोबाइल ऑपरेटर की हेल्पलाइन पर रुजू करें.
5: रकमी इस्लामिक डिजिटल बैंक, यहाँ मिलेंगे रियल सॉल्यूशंस. जैसे बस 5 मिनट्स में अपना अकाउंट ओपन करें,
6: फंड ट्रांसफर हो या कोई भी बिल पेमेंट, ऑलवेज ऑन कस्टमर सपोर्ट के साथ,
5: क्योंकि रकमी है 100% इस्लामिक.
6: जो तुम चाहो.
5: डाउनलोड द ऐप नाउ.
4: मुबारक हो, यूफोन एंड टेलीनॉर की कॉलिंग फैमिलीज मिलकर हो गई हैं मोर देन 7 करोड़. तो यूफोन से टेलीनॉर एंड टेलीनॉर से यूफोन करो लातादात कॉल्स किसी भी पैकेज पे और रहो कनेक्टेड मोर देन एवर बिफोर.
7: इस आवाज ने छीन लिया है सुकून, तो ले आए मॉसपेल, क्योंकि डे हो या नाइट मॉसपेल करेगा घंटों फाइट. मॉसपेल, मच्छर आपसे दूर रहने पर मजबूर.
3: City 89. You're listening to Sufi Hour.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 3 p.m.
3: This time check is brought to you by Jazz.
4: City FM
1: 89.
5: Coming up next.
1: Non-stop hits.
6: City FM 89. We're playing the song.
7: Trending today.
8: Thriller, the iconic pop album by Michael Jackson, is returning to the charts. The record entered the top 10 on the Billboard 200 charts, along with the top 5 on music streaming charts, with singles Billie Jean and Beat It.
7: City FM 89.
9: इस आवाज़ ने छीन लिया है सुकून, तो ले आए मॉसपेल, क्योंकि डे हो या नाइट, मॉसपेल करेगा घंटों फाइट. मॉसपेल, मच्छर आपसे दूर, रहने पर मजबूर.
10: मुबारक हो, यू फोन एंड टेलीनॉर की कॉलिंग फैमिलीज मिलकर हो गई हैं मोर देन 7 करोड़. तो यू फोन से टेलीनॉर एंड टेलीनॉर से यू फोन करो लातादात कॉल्स किसी भी पैकेज पे और रहो कनेक्टेड मोर देन एवर बिफोर.
11: City FM 89, we're playing your song.
12: No talk. Just you and the music.
13: Back to back starts now.

0: antidote to your road rage.
1: Your road rage.
2: City FM 89.
3: टेलीनॉर लाया मंथली कॉल प्रीमियम ऑफर. अभी सिर्फ 500 रुपए में ऑफर लगाओ, 3000 तमाम नेटवर्क मिनट्स पाओ, अब पहले से बेहतर कनेक्शन और सर्विसेज के साथ पूरा महीना खुल के करो बात, क्योंकि टेलीनॉर है ना यार. जाली नामी स्कीम और माली फ्रॉड के पैगाम मिलने की सूरत में अपने मोबाइल ऑपरेटर की हेल्पलाइन पर रुजू करें.
4: रकमी इस्लामिक डिजिटल बैंक, यहाँ मिलेंगे रियल सॉल्यूशंस. जैसे बस 5 मिनट्स में अपना अकाउंट ओपन करें,
5: फंड ट्रांसफर हो या कोई भी बिल पेमेंट, ऑलवेज ऑन कस्टमर सपोर्ट के साथ,
4: क्योंकि रकमी है 100% इस्लामिक.
5: जो तुम चाहो,
4: डाउनलोड द ऐप नाउ.
6: वी आर
2: सिटी एफएम 89.
7: If you're stuck in traffic right now, imagine ditching this noise and landing in a room where it's just music and people actually listening. That's literally what Mehfil is all about. It's not a concert. It's intimate, authentic, and most of all, it's interactive. They're calling it Mehfil, and honestly, sounds like something we need right now. Farhan Saeed and Call the Band are performing alongside the LLMC Ensemble, a rubab orchestra from Hunza. Nostalgic sounds and songs reimagined in a way that has never been heard before. Happening on 8th May in Karachi, 16th May in Islamabad, and 23rd May in Lahore. City FM 89, exclusive radio partners.
8: City FM 89, we're playing your song.
0: You're listening to
9: Non-Stop Hits.

0: antidote to your road rage. City FM 89.
1: टेलीनॉर लाया मंथली कॉल प्रीमियम ऑफर. अभी सिर्फ ₹500 में ऑफर लगाओ, 3000 तमाम नेटवर्क मिनट्स पाओ, अब पहले से बेहतर कनेक्शन और सर्विसेज के साथ पूरा महीना खुल के करो बात, क्योंकि टेलीनॉर है ना यार. जाली नामी स्कीम और माली फ्रॉड के पैगाम मिलने की सूरत में अपने मोबाइल ऑपरेटर की हेल्पलाइन पर रुजू करें.
2: City FM 89 is now live on WhatsApp.
3: It's so easy.
4: 0314-289-8989.
5: Save, text, voice note or call to get your song played.
4: And talk to your favorite artists. Only on City FM 89.
1: Mubarak ho. Uphone and Telenor ki calling families milkar ho gayi hain more than 7 crore. To Uphone se Telenor and Telenor se Uphone karo latadat calls kisi bhi package pe. Aur raho connected more than ever before.
0: City FM 89.
4: You're listening to
6: Non-Stop Hits.
7: You are listening to
0: The Hot List. Back-to-back music. Stay tuned.

0: LGS ट्यूबलेट दिखाए काम, इसलिए हर पाकिस्तानी के दिल को मिले पूरा आराम। AGS ट्यूबलेट बैटरी, दिल को है आराम।
1: टेलीनॉर की वीकली एक्सट्रीम प्लस ऑफर लगाओ, 550 रुपए में 60 GB डेटा, 15,000 टेलीनॉर और 300 दूसरे नेटवर्क मिनट्स पाओ। अब पहले से बेहतर कनेक्शन और सर्विसेज के साथ पूरा हफ्ता बेफिक्री से अनलिमिटेड स्ट्रीमिंग और सोशलाइजिंग करते जाओ, क्योंकि टेलीनॉर है ना यार। जाली नामी स्कीम और माली फ्रॉड के पैगाम मिलने की सूरत में अपने मोबाइल ऑपरेटर की हेल्पलाइन पर रुजू करें।
2: रकमी इस्लामिक डिजिटल बैंक, यहाँ मिलेंगे रियल सॉल्यूशंस। जैसे बस 5 मिनट्स में अपना अकाउंट ओपन करें,
3: फंड ट्रांसफर हो या कोई भी बिल पेमेंट, ऑलवेज ऑन कस्टमर सपोर्ट के साथ,
2: क्योंकि रकमी है 100% इस्लामिक।
3: जो तुम चाहो,
2: डाउनलोड दी ऐप नाउ।
4: अवेल फ्लैट 30% ऑफ एट द डाइनर्स ग्रेट फेस्टिव सेलिब्रेशन। Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
5: Mubarak ho! Uphone and Telenor ki calling families milkar ho gayi hain more than 7 crore. To Uphone se Telenor and Telenor se Uphone karo laatadaat calls kisi bhi package pe aur raho connected more than ever before.
6: Is awaaz ne chheen liya hai sukoon. To le aaye Mospel. Kyunki day ho ya night, Mospel karega ghanto fight. Mospel. मच्छर आपसे दूर रहने पर मजबूर।
7: City FM 89
8: on the dial.
9: If you're stuck in traffic right now, imagine ditching this noise and landing in a room where it's just music and people actually listening. That's literally what Mehfil is all about. It's not a concert. It's intimate, authentic, and most of all, it's interactive. They're calling it Mehfil. And honestly, sounds like something we need right now. Farhan Saeed and Call the Band are performing alongside the LLMC Ensemble, a rubab orchestra from Hunza. Nostalgic sounds and songs reimagined in a way that has never been heard before. Happening on 8th May in Karachi, 16th May in Islamabad, and 23rd May in Lahore. City FM 89, exclusive radio partners.
10: Log on to facebook.com/cityfm89 and share your feedback.
11: You got me going crazy.

0: your song.
1: Only on City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: City FM, FM, FM, FM 89.
4: Telenor laya monthly call premium offer. Abhi sirf 500 rupaye mein offer lagao. 3000 tamam network minutes pao. Ab pehle se behtar connection aur services ke saath. Pura mahina khul ke karo baat. Kyunki Telenor hai na yaar. Woohoo! Jali naami scheme aur mali fraud ke paigham milne ki surat mein apne mobile operator ki helpline pe rujoo kare.
5: Avail flat 30% off at the Diner's Great Festive Celebration. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
4: Mubarak ho! Uphone and Telenor ki calling families milkar ho gayi hain more than 7 crore. To Uphone se Telenor and Telenor se Uphone karo latadat calls kisi bhi package pe aur raho connected more than ever before.
6: Chicken pox yaad hai? Ye shingles ban ke wapas aa sakta hai. कभी सोचा भी नहीं था. तकरीबन हर शख्स के जिस्म में शिंगल्स वायरस छुपा होता है, तो शिंगल्स को अंडर एस्टिमेट ना करें.
7: फौरन अपने डॉक्टर से शिंगल्स के बारे में बात करें. खतरे में घिरे हर फर्द को जरूरी नहीं शिंगल्स हो. ये पब्लिक सर्विस मैसेज जीएस के पाकिस्तान की जानिब से है. मजीद मालूमात के लिए अपने डॉक्टर से रुजू करें.
4: मुबारक हो. यूफोन एंड टेलीनॉर की कॉलिंग फैमिलीज मिलकर हो गई हैं मोर देन 7 करोड़. तो यूफोन से टेलीनॉर एंड टेलीनॉर से यूफोन करो लातादात कॉल्स किसी भी पैकेज पे और रहो कनेक्टेड मोर देन एवर बिफोर.
8: ड्यूलक्स दे रहा है पेंट की 12 साल तक की वारंटी. आपका घर रहे महफूज पेंट की हर झंझट से, जैसे बिल्कुल नया.
9: City FM 89. We're playing your song.
10: You're listening to
11: Rush Hour with Wes.

0: करो लादादा कॉल्स किसी भी पैकेज पे और रहो कनेक्टेड मोर देन एवर बिफोर।
1: रकमी इस्लामिक डिजिटल बैंक, यहाँ मिलेंगे रियल सॉल्यूशंस। जैसे बस 5 मिनट्स में अपना अकाउंट ओपन करें,
2: फंड ट्रांसफर हो या कोई भी बिल पेमेंट, ऑलवेज ऑन कस्टमर सपोर्ट के साथ,
1: क्योंकि रकमी है 100% इस्लामिक।
2: जो तुम चाहो,
1: डाउनलोड दी ऐप नाउ।
3: सिटी एफएम 89, वी आर प्लेइंग योर सॉन्ग।
4: You're listening to
5: Rush Hour with Wes.

0: groove along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: City FM 89.
4: Hire ka naya no frost IoT refrigerator jiska multi airflow system de balanced cooling har compartment mein aur rakhe aapke refrigerator ko clean twin inverter technology jisse mile maximum cooling aur energy saving no frost no worries
5: chicken pox yaad hai ye shingles banke wapas aa sakta hai कभी सोचा भी नहीं था. तकरीबन हर शख्स के जिस्म में शिंगल्स वायरस छुपा होता है, तो शिंगल्स को अंडर एस्टिमेट ना करें.
6: फौरन अपने डॉक्टर से शिंगल्स के बारे में बात करें. खतरे में घिरे हर फर्द को जरूरी नहीं शिंगल्स हो. ये पब्लिक सर्विस मैसेज जीएसके पाकिस्तान की जानिब से है. मजीद मालूमात के लिए अपने डॉक्टर से रुजू करें.
7: एग्जाम

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 7 p.m.
3: This time check is brought to you by Jazz.
4: City FM 89.
5: Trending today.
6: Thriller, the iconic pop album by Michael Jackson, is returning to the charts. The record entered the top 10 on the Billboard 200 charts, along with the top 5 on music streaming charts, with singles Billie Jean and Beat It.
3: This show is brought to you by Jazz.
7: Chicken pox yaad hai. Ye shingles banke wapas aa sakta hai. कभी सोचा भी नहीं था. तकरीबन हर शख्स के जिस्म में शिंगल्स वायरस छुपा होता है, तो शिंगल्स को अंडर एस्टिमेट ना करें.
8: फौरन अपने डॉक्टर से शिंगल्स के बारे में बात करें. खतरे में घिरे हर फर्द को जरूरी नहीं शिंगल्स हो. ये पब्लिक सर्विस मैसेज जीएस के पाकिस्तान की जानिब से है. मजीद मालूमात के लिए अपने डॉक्टर से रुजू करें.
9: टेलीनॉर की वीकली एक्सट्रीम प्लस ऑफर लगाओ. 550 रुपए में 60 GB डेटा, 15,000 टेलीनॉर और 300 दूसरे नेटवर्क मिनट्स पाओ. अब पहले से बेहतर कनेक्शन और सर्विसेज के साथ पूरा हफ्ता बेफिक्री से अनलिमिटेड स्ट्रीमिंग और सोशलाइजिंग करते जाओ, क्योंकि टेलीनॉर है ना यार. जाली नामी स्कीम और माली फ्रॉड के पैगाम मिलने की सूरत में अपने मोबाइल ऑपरेटर की हेल्पलाइन पर रुजू करें.
10: रकमी इस्लामिक डिजिटल बैंक, यहाँ मिलेंगे रियल सॉल्यूशंस. जैसे बस 5 मिनट्स में अपना अकाउंट ओपन करें,
11: फंड ट्रांसफर हो या कोई भी बिल पेमेंट, ऑलवेज ऑन कस्टमर सपोर्ट के साथ,
10: क्योंकि रकमी है 100% इस्लामिक.
11: जो तुम चाहो.
10: डाउनलोड दी ऐप नाउ.
12: हायर कर नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में, और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन. ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
13: अवेल फ्लैट 30% ऑफ एट द डाइनर्स ग्रेट फेस्टिव सेलिब्रेशन. हरी अप एंड विजिट स्टोर नाउ और शॉप ऑनलाइन एट diners.com.pk. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
14: मुबारक हो, यू फोन एंड टेलीनॉर की कॉलिंग फैमिलीज मिलकर हो गई हैं मोर देन 7 करोड़. तो यू फोन से टेलीनॉर एंड टेलीनॉर से यू फोन करो लातादात कॉल्स किसी भी पैकेज पे, और रहो कनेक्टेड मोर देन एवर बिफोर.
7: चिकन पॉक्स याद है, ये शिंगल्स बनके वापस आ सकता है. कभी सोचा भी नहीं था. तकरीबन हर शख्स के जिस्म में शिंगल्स वायरस छुपा होता है, तो शिंगल्स को अंडर एस्टिमेट ना करें.
8: फौरन अपने डॉक्टर से शिंगल्स के बारे में बात करें. खतरे में घिरे हर फर्द को जरूरी नहीं शिंगल्स हो. ये पब्लिक सर्विस मैसेज जीएस के पाकिस्तान की जानिब से है. मजीद मालूमात के लिए अपने डॉक्टर से रुजू करें.
12: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
5: You're listening to City FM 89.
2: We're playing your song.
1: You're listening to
5: Rush Hour with Wes.

0: The perfect antidote to your road rage.
1: Your road rage.
2: City FM 89.
3: This show is brought to you by Jazz.
4: City FM 89.
5: You got me going crazy.
6: Haier No Frost IoT Refrigerator. Iski IoT technology food expiry notification ke saath saath aapko de mobile app se complete control. No frost, no worries.
7: Telenor laya monthly call premium offer. Abhi sirf 500 rupaye mein offer lagao. 3000 tamam network minutes pao. Ab pehle se behtar connection aur services ke saath pura mahina khul ke karo baat. Kyunki Telenor hai na yaar. Woohoo! Jali naami scheme aur mali fraud ke paigham milne ki surat mein apne mobile operator ki helpline par rujoo kare.
8: Avail flat 30% off at the Diners Great Festive Celebration. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
7: Mubarak ho! Ufone and Telenor ki calling families milkar ho gayi hain more than 7 crore. To Ufone se Telenor and Telenor se Ufone karo latadat calls kisi bhi package pe aur raho connected more than ever before.
9: Chickenpox yaad hai? Ye shingles banke wapas aa sakta hai. Kabhi socha bhi nahi tha. Body pe blisters aur itna sharp pain. Mahino tak zindagi bilkul mushkil ban gayi thi.
10: काश मुझे शिंगल्स के बारे में पता होता।
9: याद रखें, तकरीबन हर शख्स के जिस्म में शिंगल्स वायरस छुपा होता है, तो शिंगल्स को अंडरएस्टिमेट ना करें।
10: फौरन अपने डॉक्टर से शिंगल्स के बारे में बात करें। खतरे में घिरे हर फर्द को जरूरी नहीं शिंगल्स हो। ये पब्लिक सर्विस मैसेज जीएसके पाकिस्तान की जानिब से है। मज़ीद मालूमात के लिए अपने डॉक्टर से रुजू करें।
6: हायर का नया नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
7: मुबारक हो, यूफोन एंड टेलीनॉर की कॉलिंग फैमिलीज मिलकर हो गई हैं मोर देन 7 करोड़। तो यूफोन से टेलीनॉर एंड टेलीनॉर से यूफोन करो लातादात कॉल्स किसी भी पैकेज पे और रहो कनेक्टेड मोर देन एवर बिफोर।
4: सिटी एफएम 89।
0: यू आर लिसनिंग टू
2: रश आवर विद वेस।

0: पूरा आराम। AGS ट्यूबुलर बैटरी, दिल को है आराम।
1: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
2: सिटी FM 89, वी're प्लेइंग योर सॉन्ग।
3: You're listening to
4: Rushar with Wes.

0: AGS ट्यूबलेट दिखाए काम, इसलिए हर पाकिस्तानी के दिल को मिले पूरा आराम। AGS ट्यूबलेट बैटरी, दिल को है आराम।
1: मुबारक हो, यूफोन एंड टेलीनॉर की कॉलिंग फैमिलीज मिलकर हो गई हैं मोर देन 7 करोड़। तो यूफोन से टेलीनॉर एंड टेलीनॉर से यूफोन करो लातादात कॉल्स किसी भी पैकेज पे और रहो कनेक्टेड मोर देन एवर बिफोर।
2: Follow us at City FM 89 on Facebook, Instagram, Twitter, Vimeo, on SoundCloud.
3: The first time at the disco. When you love someone, it's natural, not demanding. Holiday with friends. Retro cinema.
4: Hey, where did we go? Days when the rains came.
3: Music that speaks to you. Reconnect to your past with me, Amar Nasir, on Retro 89.
5: Every Sunday evening from 7 p.m. to 9 p.m. only on City FM 89.
6: City FM 89. We are playing your song.
7: You're listening to
8: Beach Camp.